अनंतर दिक्कत ला आंधु दिक्कत हंस ला तेरे जोजे पे तिंगो ला ओजे नाते ना गिल पे गोंचे चिके नंसी ती संचिन डेंजे तो चिके पे अलाचं गुंबर थमर टला नंतर दिक्कत ना दो दिन इसे ना मंग ली तो तुक्त पासी इंसिंग लोजे मनी नंतर तंग यंग ना मंग चुह डेंजे नंग मन ना मंग चक जिने मरु जी हुआ उ जी जोशा सिपे मास ले तंग से जी जो तो ने बात में 而且恰成别，而且这节的个特征就难把心一百里。